जुजुलपाथौ नेपाल सम्वाद छिन्चासौ पी खुद दिल्लाथु तिर्ति थु रेडियो नेपाल ख हानी नादी सह जिरुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार मडीको वोगु वाया हुने देया थिथि राजमार्ग खे चल लुह कुत हो या ना या हुने यातायात दिल्ली चुलाना सोङ्गुदु काभ्रे पलाञ्चोक सिन्धुली स्वाइगु खुर्कुट नेपाल थो कटुन्जे बेसी बिपी राजमार्ग खुसी बाया जोखिम यता ध्यान तया सनी लखुता इलानिसिन सुथेसिया पेता इतको फुकङ कथया सवारी जोल न्याके गुली तिना तगु दुसा मकवानपुरे दुगु कान्ति लोकपथे न बर्खाया इया हठया हुनी सनी लता इलानिसिन सुथेसिया याता इतको फुकङ कथया सवारी जोल न्याके गुली डिका तगु प्रहरिया धापुदु थोयदथे इलाम नगरपालिका नौ राजदुवाली सन् दुगु मेची राजमार्ग न भेटे नाया हुने दिनासङ्गु दुसा उगु ल या वैकल्पिक लपुछेले त इनापियाना त अगुदु अर्ग खाँचिया पाणिनी गाउँपालिका दुई साल झन्डी ढोरपाटन सडक खण्डेन लुहकुता वया ल दिनासङ्गु दुसा अथियाना सिन्धुपाल्चोकिया भोटेकोसी गाउँपालिका चार जिरो किलो खेदुगु अरणीको राजमार्ग खे चल वया ल दिनासङ्गु नेपाल प्रहरिया धापु दुसा सडक या थिथी थासे ओ थिथि लागा या निकाय तेस न चिकेकु ज्या न्याका तगुदु अथेयाना नेपाल प्रहरिया कथा मकवानपुर या कान्ति लोकपथ थासा चाले धुङ्कानी थौ सुथे निसे हान ल चागु जानकारी हो गुदु देया देनियङको मनसुन या वायु प्रभाव दया चोङगुलिन थौ न यको थासे वा वैगु सम्भावनाको बिगुदु जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा कथा मनसुन या न्यूनचापीय रेखा पछि मे सरदर सिबे मो व छुन थासे पूर्वखे सरदर सोया जख सन् दुगु व दुगुली देया थिथि थासे वा वैगु सम्भावना दु महाशाखा कथा आ देनियङ्क द्य ख्युङसे चनाचङ्गु दुसा बागमती गण्डकी लुम्बिनी प्रदेश या पहाडी लागाया छुन थासे व कोशी कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश या पहाडी लागाया छगुनिगु थासे भतिचा वा वैगु सम्भावना कुबिगु धागु दुसा थौन हिने दे न्यङ्क भतिचा आकाश ख्युङसे चुनिगु सुपया भुनिगु जुगु दुसा पहाडी लागाया यिक्कु थासे बागमती गण्डकी लुम्बिनी सुदूरपश्चिम प्रदेश या तराया छुन थासे व मधेस कोशी प्रदेश या तराया छगुनिगु थासे मलनापा लाप्सा तोय भतिचा तसकम वा वैगु महाशाखा जानकारी दु हिमाली लगाया छुन थासे वा नापा चपु कुहा वैगु सम्भावना नन्दु महाशाखा कथा दे या पहाडी लगाया कोशी बागमती गण्डकी ओ कर्णाली प्रदेश या हिमाली व लुम्बिनी प्रदेश या तराई या छगुनी गु थासे आप्लङ वा वैगु सम्भावना कुबिगु जानकारी हो गुदु वङ्गु सोले देनियङ्क विपद या सोदो निस कुई खुगु झाँका जुगुदु वो मध्ये सचिव खुइमा मनुष्य गुदु राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण या कथम वैशाख एक गते निसे असार 32 गते तक विपद झाँका या झाँका स निमा मनु तना चोङ्गु दुसा गुस व पिङ्यामा मनु घापा जुगुदु थो इले पेदो सोस ने ङ्यामा ने ङ्याखा छेखाया त लिचो लागुदु प्राधिकरण फुक्कन सिबे उप च्यास गुइन हेगु मि छोगु झाँका व उकी झिन्नेमा सिगु सछि व छमा घापा जुगु व गुस व गुई खा छेया त लिचो लागु जानकारी न बिगुदु सरकार महामधुको कथा काला बिल व मिटर ब्यास पीडित या मा क घाता वार्ता पुच निसङ्गुदु मन्त्री परिषद या मिगचङ्गु सिंहदरबार या बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद या कार्यालय सचिव पुष्कर सापकोटा या समय जगते वार्ता पुच निसुनेगु कोचिनागु सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा जानकारी ब्यादिल वार्ता पुच अर्थ मन्त्रालय गृह मन्त्रालय भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सह सचिव पी दुज चोनीगु एना मन्त्री तिमल सिन्हा निसुना नागुकनादिगु खस अथियाना मन्त्री परिषद बैठक छतका नीतिका दर या नुगु डिजाइन या सिक्का टकमरी या त नेपाल राष्ट्र बैङ्क या त स्वीकृति लल ह्यागु व नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली परिस्थाय नीति कोरिया सरकारसँग वैगु छगु फुटी चे छगु मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान गुवाहाली स्वीकार यागुको छिनागु न जानकारी ब्यादिगुदु अथियाना बैठक संरक्षित लागा दुनिया राष्ट्रिय वन क्षेत्रकै दुगु सीमा पोल चिकेता मन्त्री परिषद स्वीकृति कागु लागा दुने
सीमा पोल चिके मासा प्रचलित कानून प्रक्रिया पुवाङका मन्त्रालय हे स्वीकृति लल्या फैगुन कोचिनागु धागुदु अध्ययन बैठक तिथि मन्त्रालय त्यस संगठन संरचना दरबन्दी स्वीकृत यायगु नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति या नापाङ्गु संशोधन आदेश 2083 स्वीकृत यायगु सेवा करारे ज्याना चुम्पी कर्मचारी तेगो व्यवस्थापन नापाया व्यवस्था स्वीकृत यायगु नापाया कोचिना तयानागु संचार मन्त्री डाक्टर तिमल सिन्हा जानकारी ब्यादिल प्रधानमन्त्री वरेन्द्र शाह मिसा उद्यमिते उद्यमशीलता विकास नीति पश्चिम फको ग्वालिया त सरकार जुया सोनाको ध्यादिगुदु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकारले मिग मिसा उद्यमी महासङ्घ नेपाया दुजपी नापा जुग सलासङ वैक्ल मिसा उद्यमीय हाठ्यान हङ्केता उत्पादित जोलया पर्यटकीय लागातेके प्रवर्धन यायगु लकस देके मागु ध्यादिल महासङ्घ विकास यागु जी उद्यमी ट्रेडमार्क याता पलिस्ता यायता यागु इनाप या त कया प्रधानमन्त्री शाह प्याची लिस बियादि ट्रेडमार्क या त याक्न बजारे हे त सूचना बियादिल सलस महासङ्घ प्रतिनिधि पिन्स व्यवसाय मैत्री लकस सुनिश्चित याय त वस्तु व सेवा या त राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय स्तरे बजारे थ्याङ्केता विशेष ज्याजो न्याकेता व व्यापार मेला प्रदर्शनी बिजनेस टु बिजनेस म्याचिङ व निर्यात प्रवर्धन ज्याझोले अनिवार्य बोती जुई त नापा इनाप या दिल सम्पत्ति छानबिन आयोग सम्पत्ति धल मुङ्केता छानबिन नापाया फुकन ज्या या नीति आया नीति दिकागु धागुदु आयोग मिग सूचना पिथासे सर्वोच्च अदालत या आदेश कथा रिट निवेदन या लिपाङ्गु मिति मयुबले तकया नीति सम्पत्ति थल मुङ्केता छानबिन नापाया फुकन ज्या दिकागु धागु ख आयोग पूर्व न्यायाधीश संवैधानिक आयोग पूर्व पदाधिकारी व नेपाली सेना पूर्व पदाधिकारी बाहेक या फुकन सार्वजनिक जवाबदेही या भाला निर्वायना चोङ्गु राजनैतिक पदाधिकारी व कर्मचारी तेगु सम्पत्ति धल मुङ्का चोङ्गु ख आयोग सम्पत्ति धल लल ह्यागु म्याथ थौ तकया नीति कोचिना तगु ख ताइलनिसी छपाई जुइता लियौ दुगु सवारी चालक अनुमति पत्र स्मार्ट लाइसेन्स या छपाई ज्यापुङकागु सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय धागुदु मन्त्रालय मिग पिथङ्गु प्रेस विज्ञप्ति कथ मन्त्रालय सुरक्षण मुद्रण केन्द्र पूर्वाधार विकास मन्त्रालय या यातायात व्यवस्था विभाग दति जुगु निकगु खुसिया सम्झौता कथ विभागसँग वैगु धलैया लिधसा मुक्क निन हेगु लाख स्मार्ट लाइसेन्स छापियागु ज्या सिधकागु धागु ख मन्त्रालय थो नापा नापा निसे दया ओया चङ्गु लाइसेन्स छपाइया ब्याकलग पूर्ण कथन हङ्का गुण धागुदु नापा आ नुगु सवारी चालक अनुमति पत्र या नीति यातायात व्यवस्था विभाग सन्थल वोगु नि पेघौ दुने छपाइयाना विभाग या त लल ह्यागु व्यवस्था याना गुण सञ्चार मन्त्रालय धागुदु सवारी चालक अनुमति पत्र नापा नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र अन्त शुल्क स्टिकर हुलाक टिकट व जग्गा धनी प्रमाण पत्र नापा मेगु सुरक्षण मुद्रण जोलन स्वदेश हे छपाइयागु ज्याजुया चोङ्गु सुरक्षण मुद्रण केन्द्र जानकारी बिगु ख शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल देय शैक्षिक प्रणाली भिङ्केगु नीति सरकार दीर्घकालीन योजना नापा पला ह्याकागु ध्यादिगुदु चितौन्या भरतपुर विमानस्थलले मिग संसार कमी नापा खनाबला ब्याका दिसे पोखरेल सरकार व्यवस्थित वैज्ञानिक हिसाब शिक्षा लागायता हिके तसनागु कनादिगु खस मन्त्री पोखरेल शिक्षा नापा या विधेयक वैगु पुस्ता व प्रविधि या त नापा ध्यान त हयागु ध्वात्विका दिल निजी लगायता व्यवसाय मैत्री देखे गु लकसा नीति सरकार सदा प्याछी कथा सोची या नापला छिना सोनागु लि शैक्षिक परामर्श नापा या लाग्या वै फैगु हाते या त इलेहे नियमन या त कुतया नाचोनागु विदेश अध्ययन या त वनिपी विद्यार्थी अलपत्र लागेको हाठ्यान हङ्केता कन्सल्टेन्सी मागु कथा परामर्श मार्गदर्शन याय मागु कना दिसे मन्त्री पोखरेल शैक्षिक लागे अझ उपव्यवस्थित देखे त सरकार प्रतिबद्ध जुयागु कना दिल सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल या सञ्चालक समिति सानीमा दुज मनोनित यागु दु सूचना तथा सञ्चार मन्त्री स्तरीय मिगया कोछिरा कथा सञ्चालक समिति या दुजस उर्वशी बस्न्यात सुविता रिजाल मनोनित जुयादिगु ख अध्यक्ष नियुक्ति मजिबुले तकया नीति सञ्चालक समिति सदस्य उर्वशी बस्न्यात या त बैठक या अध्यक्षता याइगु भाला नापा लल हागुदु
दुजपी निमसित मनोनयन पत्र ललहना दिसे सूचना तथा संचार मन्त्री डाक्टर विक्रम तिमल सिन्हा संविधान प्रचलित एन वो कानुन लल हागु भाला कथ निष्पक्ष उत्तरदायी जनहितमुखी कथ ज्या याता संस्था या संचालक समिति याता उजौ बिया दिल वेक्ल नेपाल या संचार लागया विकास रेडियो नेपाल व नेपाल टेलिभिजन ऐतिहासिकको महत्व जागो योगदान ठेङ्कको नेथना दिसे सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल वो संस्था तेगु गौरव जागो इतिहास याता अञ्जसे लाकी कथ नेजाके मागुली बिया दिल मध्य प्रदेश नेपाली कंग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा या गठबन्धन सरकार याता निरन्तरता बिगु सहमति ललहागुदु सोङ्गु दल या संसदीय दल या नेता तेगु मङ्का बैठक मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादव या नेतृत्व दुगु आयागु गठबन्धन याता थात्थेन तैगु जुगुदु ये या गोङ्गु वि दुगु नुगु बस पार्दुने लाला थे मनु सालिगु व दुख बि पिन्ता कारवाही याइगु जुगुदु नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ मजदुर सङ्घ संगठन या प्रतिनिधि नेपाल प्रहरी व लोसे बहुद्देश्य प्रणाली या प्रतिनिधि तेगु मिग सोङ्गु मङ्का बैठक बस पार्क याता व्यवस्था सुरक्षित हो यात्रु मैत्री देखेता थोको छिना या नागु धागुदु ये महानगरपालिका न्यायिक सहजकर्ता पाखे गुइतो सेवाग्राही यता ढेवा म्याक कानुनी व प्रशासनिक सेवा लल हागुदु काठमाडौँ महानगरपालिका 2079 चैत्र 1 गते निशी न्यायिक सहजकर्ता पाखे ढेवा म्याक कानुनी व प्रशासनिक सेवा लल हाता सङ्गु ख महानगर कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलिया कथ सुई गुगु लाया सुई गुलाया नीति गुइगु दो सेवाग्राही यता ढेवा माया कानुनी ओ प्रशासनिक सेवा लल हनागु कनादिगु खस वो मध्ये नेना चङ्गु आर्थिक देश असार 22 गते तक नि निदो सचिव सुई मासिना ढेवा माया सेवा कागुदु महानगरपालिका 2079 माघ 17 गते नेपाल ल क्याम्पस नापा सम्झौता याना स्नातक र स्नाकोत्तर तहस अध्ययन याना चोपी नियमा विद्यार्थी लिया ढेवा माया थो सेवा लल हना पूर्व नापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापर पाया नेता फते सिंह थारू चे ने दया बैंसे नेपाल गन्जे मन्त विक्रम सम्बत 1996 बाकिया थपुवा गाउँ आ बैजनाथ गाउँपालिका जन्मजुमा नेता थारू हृदय घाजुया वेस्टर्न अस्पताल वासा झोले मिग सिगु रापर पाया सह महामन्त्री ऋषिराज देवकोटा जानकारी बिया दिगु ख वेकया कथा नेता थारू या दाह संस्कार थौ राप्ती खुसी सिधनिया खाटे याइगु गोसादु सौर मास कथ दपतिक साउन 1 गते हनिगु साउने कर्कट संक्रान्ति नखा थौ देन्यङ्क मोलुया दान या नहना सङ्गु दु सूर्य मिथुन राशि या भोग पुङका कर्कट राशि सन् दुहा मनिगु नापाङ्गु दि थौ देन्यङ्क साउने संक्रान्ति या कथ हनिगु चलन्दु साउन निसे सूर्य दक्षिण पाखे गोनिगु जुगुनी थौ निसे दक्षिणयान सुरुजुई माघ 1 गते सुरुजुईको उत्तर नारायण व साउन 1 गते सुरुजुईको दक्षिणयान दक्षिणायन याता वैदिक सनातन परम्परा विशेष महत्व कथका या तगुदु यो थिए नेपाली बुझाइ याइपी स हनिगु असार हनिगु थोनखा असार न्याङ्क कृषि ज्याके व्यस्त जुई वे थोए झोले थिति कथा यागु फोर याता छेङ्गु स लुए मपुनेमा धक्का लुतो वहाँ छोइगु परम्परा दुगु न प्राध्यापक डाक्टर देवमणि भट्टराई जानकारी बिगु खस परम्परा कथ काग भलायो कुकुर डाइनो लुते झार पानी अमला कागती अमासी नासपाती नापाई या वासन जागु गुण दुगु वनस्पति तया कण्डा रख ना यागु राक्षस या पूजा या न मि छोइका वहाँ छोइगु चलन्दु आदेश पिनेया बुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरान वार्ता लिहामनिगु अझ छाक कारवाही यागु ख्यासो ब्यासङ्गु इले अमेरिका हर्मुज जलमार्गे इरान या सैन्य क्षमता लक्षित यासे नुगु हवाई आक्रमण यागु दु थोनापा अथे लक्षी निहनिसे यागु अमेरिकी इरान समझदारी लिपा डिगु प्रत्यक्ष सैन्य टक्राव हान ज्ञानपुसे चोङ्गु लकस बोलना सङ्गुदु रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुन झिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिस शुभ

लासो फ्याफुल्ला तिनी मन्जुश्री सम्मत 2862 तालो गोने लाला छेपासुम विक्रम सम्मत 2083 साल साउन लाला छेपा गिक सुङ्रे शुक्रबार चु रेडियो नेपाल हिन्ना तामाङ साङ्गुरी राङ्दा डेन्मुला ङा सूर्य मोक्तान काइब्लुन बालेन्द्र साहसे युल्डिन शोभा सोनबु चप्पल फिर्का फिल्दा चुङबारी खाम्बाला लासी सरकार से रु लासी पिन्से लमला विशेष संक्षेप मला तिनी फुटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ नेपाल दानपोका तिथेन काटुइला सिमान काइब्लुन साहसे याङलान हिउली सोनबो चप्पल शोभा गेदा ज्याबा सोसी स्यान्दा गे पिनमारी खाम्दे दोनाला रु लासी पिन्छेल मला बिसै सुङसुबा हिन्ना काइब्लुन साहसे गोर सोमनुन तहल सरकार थेन डिक्सी सोनबो चप्पल शोभारी खाम्बा सिप्लोपा तालिम सेङबा थेन नेपाली सोनबो चप्पल शोभा लिच्छा चुङबारी खाम्बा वातावरण सोसी पिन्छेल मला बिसै नन सुङसुबा मला काठुरी सङ्ला दानपो थेन मुल्मिका दिसै लोलो लोलो मुर्ग्याम युल्ला ठिम्दा नाङसी ग्लोबा चुङमा दा कादोबा कर फासी चेकेन मोख्युल थेन युल्डाङला उत्पाद आनन्द चुङबारी पिन्दोबा गुणस्तर आरेबा सोनबो चप्पल बाबरी पिन्ना आदिबा थेन फिर्का भिल्ग्याम बाबा सोनबो चप्पल अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण लासी पिनबारी काइब्रन साहदा मैजेन्डाबमबा बागमती प्रदेश सरकार से ब्लोन सिंगजांग रिमोबा ब्लोन गदे ला जिम्मेवारी पोपमला ग्रेन्ड ब्लोन बा इन्द्रबहादुर बानियाला सिफारिसी प्रदेश ग्रेन्ड पो टीका प्रसाद देवकोटा से ब्लोन सिंगजांग ला जिम्मेवारी पोप हिन्ना ग्रेन्ड ब्लोन इन्द्रबहादुर बानिया से ग्रेन्ड ब्लोन थेन ब्लोन सिंगजांग ला जिम्मेवारी किन्छु बमला बिसाम सानाम पशुपन्छी री थेन वातावरण ब्लोनखाङ ला जिम्मेवारी मधुसूदन पौड्यालदा आन्तरिक मामिला टिम थेन सहकारी ब्लोनखाङ ला जिम्मेवारी शिवराज अधिकारीदा लुई थेन सामाजिक विकास ब्लोनखाङ ला जिम्मेवारी कञ्चन चन्द्र बादेदा भौतिक पूर्वाधार विकास ब्लोनखाङला जिम्मेवारी डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटादा नोर मामिला थिएन योजना ब्लोनखाङला जिम्मेवारी प्रभात तामाङदा धुन्छेपमला चरण लसै थुङमाकी ऊर्जा थिएन सिंचाई ब्लोनखाङला जिम्मेवारी कृष्ण कुमार तामाङदा उद्योग पर्यटन गे थिएन यातायात ब्लोनखाङला जिम्मेवारी बिन्दु श्रेष्ठ दिनबमला स्यान ब्लोनगदे किरण थापा मगर उर्मिला नेपाल भरत बहादुर केसी सुरेश श्रेष्ठ जयराम थापा थिएन बिनु रायमाझी पौडेल दिसाम बिना विभागीय ब्लोनखाङला जिम्मेवारी पिनबमला विषय ग्रेन ब्लोनखाङला लोनखाङसे पाङबा हिन्ना प्रतिनिधि सभाला जामेकोला थेन सामाजिक मामिला समिति से राष्ट्रिय समावेशी आयोगदा युल्ठिम अनुसार युल्ला बेनान तहदा समावेशी सोबारी खाम्तो बा ठिम्ला फेरी काठुइला बमला समितिला तिरटीपछि साङ्री सांसद गदे से समावेशी आयोग से लैङ्गिक थिएन यौनिक अल्पसंख्यक अपाङ्गता बा थिएन गान्बा हिर्बा गदेला थुम्री प्रभावकारी गेलाबारी खाम्सिटी बारे विषय सुङबमला जे साङ्री राष्ट्रिय समावेशी आयोगला गेतेन बाचोहो हरिदत्त जोशी से आयोगला गे थुम्री मुबा लोलोलोलो गोर्चुई से गिक थुम्ला फेरी अध्ययन अनुसन्धान लसी कार्यान्वयन लबारी सरकार द सिफारिस लाभ मुसाइनन् दान्दे कार्यान्वयन लबारी खाम्सिटी बारे विषय सुङसिप मला समितिला चोहो आकृति अवस्थी से समाजरी मुबा बेनान युल्बा से सम्मान ल छ्याम्री सबारी म्याङबा याङताम दा सुनिश्चित लबारी स्यान संवैधानिक आयोगका दिसेन डिक्सी गे लबारी मोइजेन ला सुप मला नोर ब्लोनखाङसे सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन ठिम 2079 दा संशोधन लाबारी शोभा विधेयकला मस्यौदारी सरोकार थान्बा बेनालन सुझाव रि बमला ब्लोनखाङसे सार्वजनिक सूचना छिसे मस्यौदा सार्वजनिक लाबन तोकलाबा दुई नाङ्ग्रे सुझाव पुइखाबारी नन् मोइजेन लाबमला तोकलाबा दुई रे पुइखाबा सुझाव दखिन्छि विधेयक वासेल मला बिसे ब्लोनखाङसे पाङबमला मस्यौदारी सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन घेदिमला भूमिका प्रष्ट शोभा सरकारला सियर्थेन छे लगानी लाबा तान्दा ठिम अनुसार शोभा सरकारी छे हिउल नाङ्ग्री थिएन फिर्का भ्युल्ला बजारी पुइबारी खाम्बा ठिम शोभा थिएन फिर्का भ्युल्ला टाङ्गदा छोङपत्र जारी लाबारी खाम्बा ठिम प्रस्ताव लाबमुला युल्ठिम संशोधन बहसपत्र गेदल से राङला विस्तृत प्रतिवेदन काइब्लोन थेन ब्लोन सेङजाङला गे दिम्री बुझब्ला बमुला काइब्लोन बालेन्द्र साहला ग्रेठिम सल्लाहकार असीम साहला थुतबन्डी शोभा गेदल से तिलमा प्रतिवेदन बुझब्ला बमुला विषय काइब्लोनला लोन खाङसे पाङबा हिन्ना निब 2082 साल चैत्र लाला चुइसे सोमकुनु शोभा छार सरकार से जारी लाबा शासकीय सुधार सम्बन्धी ग्यारजगिक गे सूचीला बुधा नम्बर बेरी युल्ला ग्रेठिम थेन संस्थागत सुधार निर्वाचन ठिमिनाङमा ताम्रिका युल्ठिम संशोधन लाभ सम्बन्धी बहसपत्र सुबारी गेदल सोसी काठुई लाभ प्रक्रियारी बेनादन बोकिनबुङमा पारदर्शी थिएन देनमा ताम्री आधारित सोसेलामुला विषय पाङबामुला निब 2082 साल चैतलाला चिसे ढोकुनटीमा ब्लोन सेङजाङला चिसाङसे हुल्टिम संशोधन बहसपत्र गेदल शोभामुबा
सरकार चाहिँ स्वीकृत दरबन्दीलाई करारी गेला पनि खपा कर्मचारी दा व्यवस्थापन नभरी सम्बन्धित लोनखाङ आयोग लोनखाङ थिन गेदिम दा निर्देशन पिन बमला सानम व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला थिन सामान्य प्रशासन लोनखाङ चाहिँ नेपाल सरकार लोनसेङ ज्याङला चिसाङसेलाबा निर्णय अनुसार स्वीकृत दरबन्दीलाई करारी गेला पनि खपा कर्मचारीका दिँदा व्यवस्थापन नभरी ठिम सोची कार्यान्वयन नभरी निर्देशन पिन बहिन्न निर्देशन नै चुबीमा गाछ खाजी बनाउन सरकारी सेवा ग्याम रिटायर दसैँ सरकारी सुविधा किन्से जिनमा मिसे करारी गेलाबारी खाबा मुला बिसान तिनी हेन्से गेलाबारी आथान बारी नुन पाङबा मुला चुरानु लासी संघीय ब्लोनखाङका धेरै करारी गेलाबन खाबा कर्मचारीका धेरैला विवरण किनमाले छ बेनन संगठन थिन व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत लाबाले छ आवश्यकतालाई आधारित चेकन कर्मचारी द गेला पुङबा रिनुन निर्देशन पिनमा मुला संघीय संसद लोनखाङसे प्रतिनिधि सभा थिन राष्ट्रिय सभालाई मूल बेके दिँदा युल्ला ठिम अनुसार सम्पत्ति विवरण बुझब्ला भरे मोहिजेनला बोला संसद लोनखाङलाई रोलोन छेन अधिराज राईसे सांसद गदेसे राङ्ला थिन राङ्ला दिमथेमेला मिन्डी मुबा सम्पत्तिला स्रोतला बेरान विवरण खामबन्दीलासी सांसद सुविधा व्यवस्थापन शाखाले पुगेका भरे मोहिजेनला बहिन्ना तिनी एनसे डेङ्गु सचेतना अभियान ती बमला लुइथेन चाबसे स्वच्छता लोनखाङना अनुसार बेनान सार्वजनिक निकाय गेदिम लोपखाङथेन सामुदायिक गेन्दुनरे लामखुट्टे टिबा ग्ला माइसे साइबरी साताला तिरे सुङ्रे शुक्रबार कुनु सफा शुक्रबार गे खोर्सङ छेला तापहिन्ना साउन भदौ थिएन असोजलारी ओडा गेदिम टोल विकास गेन्दुन नागरिक समाज थिएन सरोकार थानमा निकायका दे डिक्सी साताला तिरे बेनान छन् लामखुट्टे टिबा ग्ला माइसे साइब अभियान सङ्ख्याला तापमुला सरकार चाहिँ नर्दिङ 2082-83 नाङ्ला चुनुन असारलाला घिची चाहिँ ब्ली कुनु दोनामा लाख घाँ तोङ डुची चाहिँ गिक मेट्रिक टन रासायनिक सार भोलसे जिम्मा मुला बेसी पाङमा मुला सानम रिथेन पर्यावरण ब्रोनखाङला अनुसार चु नर्दिङ दा अर्ब घिची से भ्रे करोड भ्रे चुई से घिँ लाख चुई से ब्ली टाङ्गा सार ग्लोबारी फेब मुबा ललितपुर जोङला जाउला खेल डिम्बुबा चिडियाखाना तिनी हिंस देपेन्ठाङ बमुला कावा घुवाइथेन हाँस्री बर्ड फ्लू संक्रमण पुष्टि दाबली छ चिडियाखाना निबा असारलाला घाँ कुनु हिंसे ढुङ बमुबा बर्ड फ्लू संक्रमण भानालाबारी चराचुरुङ्गीका दिँदा मानलाबा सरसफाई लाबा थिएन थान्दबा घारी व्यवस्थापन लाबली छ वातावरणीय नमुना परीक्षण लामा एभियन इन्फ्लुएन्जा ब्लड फ्लू भाइरस आमराङमा चाहिँ चिडियाखाना देपेन्ठोङ ढुङख्वाङ बाहिन चिडियाखाना प्रशासनमा अनुसार तिनमा पशु सेवा विभाग मियो पशु ह्याम अनुसन्धान प्रयोगशाला थिएन इपिमिडियोलोजी थिएन ह्याम नियन्त्रण महाशाखा थिएन ग्रेन तान्पका देला चिसाङ टेबली छ चिडियाखाना देपेन्ठोङ बाहिन उसै तिनी दिङनुन दाङसे साउनलाई गेकुनु दाङमान खाबा साउने सङ्क्रान्ति प्रिभा युल्क्योङ्ग्रे दाङमान मुला तिनी मिथुन राशि ग्याम कर्कट राशि वाङमा लिच्छ रे अर्थात् साउनलालाई गेकुनु दा युल्क्योङ्ग्रे साउने सङ्क्रान्तिलाई रूप्री दाङमान खाबा ठेम्मला चुनुन साङ्गुर गेदेला छ्याम्री तिनी द तामाङ साङ्गुर जिन्जी रेडियो नेपाल ज्ञानमा लसिगो लसो फ्याफुल्ला

ई रेडियो नेपाल ठीक अरविन्द मिश्र सँग मैथिलीमे समाचार सुनल जाय। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वदेशमे उत्पादित जुत्ता चप्पल के निर्यात प्रवर्धनमे सरकार आवश्यक सहजीकरण करबाक बात पर प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदक कार्यालयमे आई फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अफ नेपाल के पदाधिकारी आ सदस्य संघक छलफल में प्रधानमंत्री शाह जूता चप्पल के आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सृजनक लेल आवश्यक सहयोग पहुँचेबाक बात बतौलन। ओ तीनटा तहक सरकारक समन्वय में जूता चप्पल उत्पादन संबंधी सीफ मूलक तालीम संचालन तथा नेपाली जूता चप्पल के प्रवर्धन तथा बाजारीकरण में निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन कल जेबाक बात बतौलन। छलफल में संघक पदाधिकारी तथा सदस्यगण विभिन्न सीमा नाका सँ होइत गेल अवैध चोरी पैठारी नियंत्रण करबाक लेल करक दायरा बाहर रहल अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय उत्पादन के कानूनी परिधि में अनबाक लेल गुणस्तरहीन जूता चप्पल के आयात नियंत्रण करबाक तथा आयातित जूता चप्पल में अनिवार्य गुणस्तर परीक्षण लागू करबाक लेल प्रधानमंत्री शाहक ध्यान आकर्षण करौने छलथि। संगे ओ लोकनि सरकार सँ आवश्यक नीतिगत सहयोग बाजार संरक्षण उद्योग मैत्री व्यवस्था भेल स्वदेशी जूता चप्पल उद्योग पूर्ण क्षमता में संचालन भऽ सकबाक विश्वास दियौने छलथि। प्रतिनिधि सभाक महिला तथा सामाजिक मामला समिति राष्ट्रीय समावेशी आयोग सँ संविधान द्वारा परिकल्पना कयल राज्यक हरेक तह समावेशी हेबाक व्यवस्थाक संबंध में छलफल कलक अछि। समितिक आई सिंह दरबार में बैसल बैठक में सांसद लोकनि समावेशी आयोग लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अपांगता आ ज्येष्ठ नागरिकक क्षेत्र में प्रभावकारी काज कर नहीं सकल बतौलन। पहुँचक भर पर बेर बेर एक गोटे व्यक्ति आरक्षण कोटाक प्रयोग करैत आयल कहते सांसद लोकनि एक व्यक्ति एक बेर मात्र आरक्षण के सुविधा प्रयोग कऽ पेबाक कानूनी आ कानून बनेबाक लेल सरकार के सिफारिश करबाक आग्रह कलन। बैठक में राष्ट्रीय समावेशी आयोगक कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशी आयोगक कार्यक्षेत्र रहल विभिन्न 11 क्षेत्र सँ अध्ययन अनुसंधान का कार्यान्वयन के लेल सरकार के सिफारिश कयल गेलाक बावजूदो कार्यान्वयन नहीं भ सकल बतौलन। नेपालक 142 जात जाति मध्य 74 जात जाति के राज्य कोनो निकाय में पहुँच नहीं रहल। अध्ययन सँ अयलाक बाद जात जातिक अलगे क्लस्टर बनेबाक लेल सरकार के सिफारिश कयल अध्यक्ष जोशी बैठक के जानकारी करौलन। समितिक सभापति आकृति अवस्थी समाज में प्रत्येक नागरिक सम्मानजनक बाँचो पेबाक अधिकार सुनिश्चित करबाक लेल आ अन्य संवैधानिक आयोग सब संघक समन्वय में काज करबाक लेल आग्रह कलन। एखन धरि भेल सिफारिश सँ पुनः एक बेर फॉलो करबाक लेल आग्रह करैत सभापति अवस्थी आयोग द्वारा कयल अध्ययन अनुसंधान आवश्यक स्थान धरि पहुँचबाक लेल सेहो अनुरोध कयलनि। सरकार स्वीकृत दरबंदी में करार में कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापन करबाक लेल संबंधित मंत्रालय आयोग सचिवालय तथा कार्यालय के निर्देशन देलक अछि। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय नेपाल सरकार मंत्रिपरिषदक निर्णय अनुसार स्वीकृत दरबंदी में करार में कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापन संबंधी व्यवस्था कार्यान्वयन करबाक निर्देशन देलक अछि। निर्देशन में इससे पहले कोनो सरकारी सेवा सँ अवकाश प्राप्त कऽ सुविधा लेल वा निवृत्ति भरण पाबि रहल व्यक्ति के करार में कार्यरत भेला पर 2083 साल सन 1 गते सँ सेवा निरंतरता नहीं दा समझौता सँ विदा करय लागल कहल गेल अछि। अहिना संघीय मंत्रालय अंतर्गत कार्यालय में करार में कार्यरत कर्मचारी के एकीकृत विवरण तैयार कर संबंधित निकाय पुनरावलोकन कयल जेबाक उल्लेख अछि। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ONM स्वीकृत भेलाक बाद आवश्यकता अनुसार मात्र करार कर्मचारी के काज में लगेबाक लेल निर्देशन देल गेल अछि। मंत्रालय नया स्थापना भेल निकाय में सृजना हेबाक दरबंदी व रिक्त दरबंदी में आवश्यक पड़ला पर पुल पर रहल करार कर्मचारी के प्राथमिकता दऽ सकबाक जनौलक अछि। निर्देशन में विभिन्न मंत्रालय अंतर्गतक निकाय एकीकरण व खारिजिक प्रक्रिया में रहल अवस्था में कर्मचारी व्यवस्थापन के लेल आवश्यक व्यवस्था मिलेबाक लेल सेहो कहल गेल अछि। करार कर्मचारी के उपलब्ध करबैत आयल तलब भत्ता संबंधित मंत्रालयक अनुरोध पर अर्थ मंत्रालय व्यवस्थापन करबाक तथा कार्यान्वयन के क्रम में देखल गेल समस्या समाधानक लेल सामान्य प्रशासन मंत्रालय अध्ययन का उपयुक्त विकल्प सिफारिश करबाक उल्लेख अछि। संघीय संसद सचिवालय प्रतिनिधि सभा आ राष्ट्रीय सभाक सदस्य सब के कानून अनुसार संपत्ति विवरण बुझेबाक लेल स्मरण करौलक अछि। भ्रष्टाचार निवारण 2059 के दफा 50 के उपदफा 1 अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग 2048 के दफा 31 के क के उपदफा 1 के
प्रयोजनार्थ संघीय संसदक सदस्य सबके आर्थिक वर्ष 2082-83 समाप्त भेल तिथि से 60 दिन भीतर संपत्ति विवरण बुझबाक लेल आग्रह कयल गेल अछि। संसद सचिवालयक उप सचिव अधिराज राय संसद आ सांसद लोकन अपन व अपन परिवारक नाम में रहल संपत्ति के स्रोत व निस्सा सहितक अद्यावधिक विवरण के खामबंदी का संसद सुविधा व्यवस्थापन शाखा में दर्ता करबाक लेल अनुरोध कयल जानकारी करौलन। आइ सँ 3 मासक डेंगू सचेतना अभियान शुरू भेल अछि। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालयक अनुसार अभियान अंतर्गत सब सार्वजनिक निकाय कार्यालय विद्यालय तथा सामुदायिक संस्था में मच्छर के प्रजनन स्थल तथा वास स्थानक खोजी तथा नष्ट करबाक लेल प्रत्येक सप्ताह हरेक शुक्र दिन सफा शुक्रवार कार्यक्रम संचालन कयल गेल अछि आ कयल जायत। साउन भादव आश्विन मास में वाड़ा कार्यालय टोल विकास संस्था नागरिक समाज तथा सरकार भेल निकाय सब संग समन्वय का प्रत्येक सप्ताह के एक दिन समुदायक सहभागिता में मच्छर के प्रजनन स्थल तथा वास स्थान खोजी तथा नष्ट अभियान संचालन कयल जात। प्रत्येक स्थानीय तक अपन कार्य क्षेत्र भीतर रहल ऑटो वर्कशॉप गैरेज कबाड़ी सामान व्यवस्थापन स्थल निर्माणाधीन भवन तथा पानि जमा वाला संभावना रहल अन्य स्थानक नियमित अनुगमन करबाक आ जमल पानि के निकास तथा व्यवस्थापन करय पड़त। डेंगू संबंधी व्यवहार परिवर्तन अनबाक उद्देश्य विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था मार्फत साथी शिक्षा कार्यक्रम आ विद्यालय सौर सफाई अभियान संचालन कयल जायत। एना विद्यालय स्वास्थ्य निरीक्षण टोली गठन का नियमित सौर सफाई के अवस्था अनुगमन कयल जायत। इपिडियोमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा कीटजन्य रोग नियंत्रण शाखा प्रमुख डॉक्टर गोकर्ण दाहल साउन सा डेंगू के संक्रमण विस्तारे बढ़ते जबाक आ भादव में उच्च अवस्था में पहुंचबाक आसिन कार्तिक धर्म में एक जोखिम रहबाक कारण ने 3 मास में डेंगू सचेतना अभियान संचालन करा लागल बतौलन। जिला के विभिन्न अस्पताल में आयल रोगी मध्य 893 गोटे में स्क्रब टाइफस संक्रमण देखल गेल अछि। गत आर्थिक वर्ष में जिला के अस्पताल में आयल रोगी मध्य 11,419 गोटे परीक्षण के क्रम में ओकर सबके स्क्रब टाइफस के संक्रमण चितवन में देखल गेल अछि। जन स्वास्थ्य कार्यालय चितवन के कीट नियंत्रक राम केसी के अनुसार संक्रमित मध्य 621 गोटे चितवन के रहल अछि। जिला में भेटल संक्रमित मध्य रत्नगर नगर पालिका 246 गोटे, खैरहनी नगर पालिका 117 गोटे, भरतपुर महानगर पालिका 90 गोटे में एहि रोगक संक्रमण देखल गेल अछि। यही तरह रापी नगर पालिका 82 गोटे, कालिका नगर पालिका 69 गोटे, माणी नगर पालिका 7 गोटे, इच्छा कामना गांव पालिका 10 गोटे में एहि रोगक संक्रमण देखल गेल केसी बतौलन। आर्थिक वर्ष 2081-82 में 7,095 गोटे में परीक्षण करित काल 1,055 गोटे में एहि रोग के संक्रमण देखल गेल छल। चालू आर्थिक वर्ष में एहि रोग के संक्रमण से 1 गोटे के मृत्यु भेल छल। स्क्रब टाइफस रोग मूस के कान में व अन्य जीव जंतु में होबय वाला संक्रमित किरणा के कारण व्यक्ति में ऐसा पठित अछि। आ स्क्रब टाइफस में मनुष्य के उच्च बुखार हेबाक, आँख लाल हेबाक, खोखी उल्टी, पेट देखाब, पेट झड़ी सताब, सांस फेरा में समस्या हैब, माथ दुखाब, जोड़नी आ मांसपेशी दुखाब, बिमिरा देखाब आ जैठाम कठने वो कारी दाग सन लक्षण देखल जाते हैं। एहि रोग से बचबाक लेल खेत झाड़ी वन जंगल में जायत काल लंबा आ पूरे बाएं के कपड़ा लगेबाक, उपयुक्त जूता लगेबाक, शरीर के खुला भाग में कीटनाशक मलहम के प्रयोग करबाक आ घर आसपासक खेती बाड़ी में घास नहीं बढ़ा देबाक आ वातावरण सफा रखबाक, मूस नियंत्रणक लेल उपयुक्त तरहक अन्न भंडारण कयल जेबाक केसी बतौलन। अनामनगर नया वानेश्वर जमल रानीबन तथा सिंह दरबार सहितक आसपासक क्षेत्र सामान्य वर्षा में सेहो डुबान में पड़बाक क्रम नहीं रोकल गेल अछि। काल्हि मध्याह्नक वर्षा पश्चात एहि क्षेत्र में जलमग्न भेला से सवारी आवागमन प्रभावित बनल। काठमांडू पत्रिका पेयजल खाने पानी लिमिटेड KUKL के प्रवक्ता प्रकाश कुमार राय मायतीघर क्षेत्र के नीचा में बहिकर जायवला ओहि क्षेत्र में जमा होइत गेल जानकारी देलनि। वो कहलन जब मायतीघर नीचा में रहला कारण टुकुचा आ खोला दिस निकास भेलाक बावजूदो वर्षाक समय में टुकुचा में पानिक सतह बढ़ला पर ढलक पानि सहज रूप में नहीं बह पबैत अछि। तैसा सड़क में पानि जमल आ ओहिठाम बाढ़ के स्वरूप देखल जाइत अछि। मुख्य समस्या ढल निकास प्रणाली में अछि, पुरान पाइप छोट अछि, प्रवक्ता राय कहलन। ओहि क्षेत्र में रहल अधिकांश ढल के पाइप पुरान आ ओहिठाम रहल त
ओकर क्षमता वर्षामे सेहो बहाव नहि पर्याप्त कऽ सकैत अछि। मैतीघर, न्यू प्लाजा, सिंह दरबार आसपासक ढल व्यवस्थापनक एकीकृत रूपमे सुधार सम्बन्धमे छलफल भेलाक बावजूदो विस्तृत योजना कार्यान्वयन नहि भऽ सकल अछि। तीव्र शहरीकरण, वर्षाक पानि जल्दी निकास करबाक लेल अलगसँ प्रणालीक अभाव, पुरान ढलक सीमित क्षमता, नदी खोलाक प्राकृतिक बहाव, साँघुरैत जायब आ राजधानीमे डुबानक समस्या बढ़बाक प्रमुख कारण रहल बतौलनि। देशक प्रमुख भन्सार नाकाके रूपमे रहल विनिगर भन्सार कार्यालय गत आर्थिक वर्ष 2082-83 अर्थात एक वर्षक अवधिमे 2,43,82 करोड़ टाका राजस्व वसूली कयलक अछि। अर्थ मंत्रालय भन्सार विभाग विनिगर भन्सार कार्यालय ICP के आर्थिक वर्ष 2082-83 के लेल 2,73,37 करोड़ टाका राजस्व संकलन करबाक लक्ष्य तोकल गेल छल। ICP वीरगंज एक वर्षक अवधिमे तोकल गेल लक्ष्यक 89.19% राजस्व वसूली कयलक अछि। रेडियो नेपालसँग सुन्दै छलहुँ, मैथिली भाषामा समाचार समाप्त भेल।

0: जी रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार और मीटर ब्याज पीड़ितों के बीच हुई नौ सूत्रीय सहमति। मीटर ब्याज विरुद्ध आंदोलन हुआ स्थगित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने जूता उत्पादक संघ के पदाधिकारियों के साथ किया विचार विमर्श। स्वदेश में उत्पादित जूते चप्पलों के निर्यात प्रोत्साहन को सहज बनाने की प्रधानमंत्री ने जताई प्रतिबद्धता। बागमती प्रदेश सरकार ने मंत्रालयों की संख्या 14 से घटाकर बनाई 8। और ईरान पर छठे दिन भी अमेरिकी हमले जारी। कम से कम 8 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार और मीटर ब्याज पीड़ित पक्षों के बीच आज 9 सूत्रीय समझौता हुआ है। इसके साथ ही पिछले 9 दिनों से जारी मीटर ब्याज विरोधी आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। जनकपुर के त्रिहुतिया गाछी से शुरू हुआ पैदल न्याय मार्च 12 के निजगढ़ पहुंचने के बाद पीड़ित प्रतिनिधियों और सरकार के बीच वार्ता हुई। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के सचिव पुष्कर सापकोटा के नेतृत्व वाली सरकारी समिति और पीड़ित पक्ष के प्रतिनिधियों के बीच 9 बिंदुओं पर सहमति बनी। समझौते पर सरकारी पक्ष की ओर से सचिव पुष्कर सापकोटा और पीड़ित पक्ष की ओर से अवधेश कुशवाहा ने हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार सरकार मीटर ब्याज को आर्थिक अपराध घोषित करने और इस कुप्रथा के पूर्ण उन्मूलन के लिए मंत्रिपरिषद में प्रस्ताव पेश करेगी। साथ ही 3 महीने के भीतर मीटर ब्याज नियंत्रण संबंधी कानून का मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसमें मामलों की सुनवाई के लिए अलग न्यायाधिकरण, पीड़ितों की संपत्ति की वापसी और उचित मुआवजे की व्यवस्था होगी। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने स्वदेश में निर्मित जूते चप्पलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से हर संभव सहयोग और आवश्यक सहजीकरण की प्रतिबद्धता जताई है। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में नेपाल जूता उत्पादक संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ हुई बैठक में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि जूते चप्पलों के आयात पर निर्भरता कम करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार आवश्यक सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि संघ प्रदेश और स्थानीय तहों की सरकारों के समन्वय से जूते चप्पलों के उत्पादन से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण संचालित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उद्योगों की उत्पादन क्षमता के अनुरूप कच्चे पदार्थ के आयात की सीमा पर प्रभावी ट्रैकिंग और अभिलेख प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी। बागमती प्रदेश सरकार ने मंत्रालयों की संख्या 14 से घटाकर 8 कर दी है। नए आर्थिक वर्ष 2083-84 की शुरुआत के साथ नई व्यवस्था आज से लागू हो गई है। वैशाख 22 गते को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णय के अनुसार अब मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सहित प्रदेश में कुल 8 मंत्रालय होंगे। नेपाल के संविधान के तहत प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा ने मुख्यमंत्री इंद्र बहादुर बानिया की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के कार्यों का भी विभाजन किया। देश भर में मानसूनी हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण आज भी अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना है। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार मानसून की निम्न दबाव रेखा पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य स्थिति से कुछ उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में सामान्य स्थिति से आसपास रहने के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश होगी। महाशाखा के अनुसार बागमती, गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ स्थानों तथा कोशी, कर्णाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा हो रही है। महाशाखा ने बागमती, गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी तथा तराई क्षेत्रों के 1-2 स्थानों, कोशी और बागमती प्रदेश के हिमालयी क्षेत्रों, कोशी, बागमती, लुम्बिनी और कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों और लुम्बिनी प्रदेश के तराई क्षेत्र के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई है। इसे देखते हुए लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। ललितपुर के जावला खेल स्थित सदर चिड़ियाघर आज से सर्वसाधारण के लिए फिर से खोल दिया गया है। कौवों, गिद्धों, बत्तखों सहित अन्य पक्षियों में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि होने के बाद चिड़ियाघर को गत आषाढ़ 5 गते से बंद कर दिया गया था। संक्रमण पर नियंत्रण के लिए बीमार पक्षियों का उपचार, सफाई और अन्य आवश्यक प्रबंधन कार्य पूरा किए जाने के बाद पर्यावरणीय नमूनों की जांच में एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू वायरस न मिलने पर चिड़ियाघर को दोबारा खोल दिया गया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
1: नेपाल टेलिकम को 4G

0: नेपाल टेलिकॉम राष्ट्र को संचार।
1: अब बाकी समाचार। भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय ने आज सभी सरकारी निकायों को 7 सूत्रीय परिपत्र जारी करते हुए वर्तमान में करार पर कार्यरत कर्मचारियों को अगली व्यवस्था होने तक संबंधित निकाय में ही करार समझौते के साथ पूल में रखने का निर्देश किया है। मंत्रालय ने कहा है कि संगठन एवं प्रबंधन सर्वेक्षण स्वीकृत होने के बाद संबंधित निकाय आवश्यकता के अनुसार पूल में रखे गए कर्मचारियों को कार्य पर लगाएंगे। परिपत्र के अनुसार नए स्थापित निकायों में सृजित होने वाले पदों या किसी निकाय में रिक्त पदों पर करार कर्मचारी की आवश्यकता होने पर नए व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाएगी। इसके बजाय विभिन्न निकायों के पूल में उपलब्ध करार कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन मंत्रालय के माध्यम से मांग कर करार समझौते के आधार पर कार्य पर लगाया जाएगा। प्रतिनिधि सभा की महिला एवं सामाजिक मामला समिति ने आज राष्ट्रीय समावेशी आयोग के साथ समावेशिता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में सांसदों ने कहा कि आयोग लैंगिक एवं यौनिक अल्पसंख्यकों, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सका है। उन्होंने सरकार से ऐसा कानून बनाने की सिफारिश करने का आग्रह किया जिससे कोई भी व्यक्ति आरक्षण का लाभ केवल एक बार ही ले सके। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मंत्रालय ने आज से 3 महीने का डेंगू जागरूकता अभियान शुरू किया है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत प्रत्येक शुक्रवार हर शुक्रवार स्वच्छ शुक्रवार कार्यक्रम चलाकर मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान कर उन्हें नष्ट किया जाएगा। श्रावण भाद्र और आश्विन महीनों में समुदाय की सहभागिता से विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही विद्यालयों में साथी शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय स्वच्छता अभियान और स्वास्थ्य निरीक्षण के माध्यम से डेंगू के प्रति जागरूकता पढ़ाई जाएगी। एपिडेमियोलॉजी तथा कीट जनित रोग नियंत्रण शाखा के प्रमुख डॉक्टर गोकर्ण दाहाल ने बताया कि श्रावण से डेंगू के मामले बढ़ने लगते हैं, भाद्र में संक्रमण चरम पर पहुंचता है और आश्विन कार्तिक तक इसका खतरा बना रहता है। इसी को देखते हुए 3 महीने का विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। नेपाल टेलीकॉम ने मुगू और बाजुरा के दुर्गम हिमालयी क्षेत्रों में 4G सेवा का विस्तार किया है। टेलीकॉम ने मुगू जिले की सोरू गांवपालिका 6 के सोरू कोट तथा बाजुरा जिले की हिमाली गांवपालिका 1 के बिछया स्थित नेटा और वार्ड नंबर 5 के कुवाड़ी क्षेत्र में 4G सेवा शुरू की है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान पर अमेरिकी हमले लगातार 6ठे दिन भी जारी रहे। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने के उद्देश्य से नई हवाई कार्रवाई की है। हमलों में दक्षिणी ईरान के अंदर अब्बास और केश्म द्वीप के आसपास स्थित सैन्य ठिकानों, तटीय निगरानी प्रणालियों, वायुरक्षा इकाइयों और सैन्य रसद केंद्रों को निशाना बनाया गया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार ताजा अमेरिकी हमलों में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है और 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं व्यापक संघर्ष के दोबारा शुरू होने के बाद से मरने वालों की संख्या कई दर्जन तक पहुंच चुकी है। अमेरिका की ओर से जारी अभियान के जवाब में ईरान ने भी खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इस बीच दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हमलों और जवाबी कार्रवाई के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री व्यापार और वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी असर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार और मीटर ब्याज पीड़ितों के बीच हुई 9 सूत्रीय सहमति, मीटर ब्याज विरुद्ध आंदोलन हुआ स्थगित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने जूता उत्पादक संघ के पदाधिकारियों के साथ किया विचार विमर्श। स्वदेश में उत्पादित जूते चप्पलों के निर्यात प्रोत्साहन को सहज बनाने की प्रधानमंत्री ने जताई प्रतिबद्धता। बागमती प्रदेश सरकार ने मंत्रालयों की संख्या 14 से घटाकर बनाई 8। और ईरान पर 6ठे दिन भी अमेरिकी हमले जारी, कम से कम 8 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।
2: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
3: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा सोसियल मिडिया डाटा प्याक पाइन्छ। त्यही मजाले चलाउने
1: स्टार 14-15 ह्यास डायल गर्नुहोस्।
0: नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।